0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
2: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शेर रेडियो इंस्पायर एफएम है।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
2: I have wisdom.

नरिशमेंट देती। गौर व फिक्र, पढ़ना लिखना, इल्म हासिल करना, कायनात में गौर व फिक्र, मुख्तलिफ चीज़ों को जानना, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना आप लिखें पढ़ेंगे, आपका दिमाग जो है उतना ही उसका जंग उतरता चला जाएगा, वो चमकेगा। तो एक मोतदिल इंसान जो होता है उसकी ज़िंदगी के ये चारों पहलू इकट्ठे ग्रो करते हैं। और हमारा दीन, दीन इस्लाम जो है वो इसीलिए एक परफेक्ट दीन है कि वो हमें इन चारों चीज़ों के अंदर बैलेंस करना सिखाता है, और इन चारों के तकाजे पूरे करने का नाम इबादत है। हलाल खाना पीना क्या है? इबादत है। इसी तरह नमाज रोज़ा इबादत है, मोहब्बत भी इबादत है, और पढ़ना लिखना और गौर व फिक्र भी इबादत है। इसके मुकाबले में अगर हम इसमें से अपने दिल के तकाजे भूल जाएं तो हम अपना हक मारते हैं, वो भी अपने ऊपर जुल्म है। इसी तरह दिमाग के, रूह के, जिस्म के, तो कोई भी दीन इंसानों को कामयाब नहीं कर सकता जिस दीन के अंदर क्या ना हो, इन चार ज़रूरियात का ख्याल न रखा गया। अब कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं, बाज अदियान में क्या है, खाना पीना या अच्छा खाना जुर्म, शादी करना तकवा के खिलाफ, बाज में क्या है कि पढ़ना लिखना उसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं, और बाज लोगों ने उन लोगों को पूजना शुरू कर दिया फाके काट काट के जिनके पसलियाँ बाहर निकल आई और पेट अंदर चला गया, और कहा कि ये तो बहुत ही पहुँचे हुए इंसान हैं और इतने इतने अरसे तक इन्होंने खाया नहीं। दीन इस्लाम में खुद को भूखा मारना बिला वजह जुल्म है। इसी तरह शादी ना करना जुल्म है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी। तो इस चार पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है। तो जालिम कौन होता है? जो इन में से कमी कर दे, किस में, किसी एक चीज़ को ख़त्म कर दे कि ये मेरी ज़िंदगी से बाहर है। नहीं, कुछ भी बाहर नहीं है, सब अंदर, लेकिन जायज़ और हलाल तरीके से। न खाना हराम के रास्ते से हो, न निकाह से बाहर के ताल्लुक हो, और ना ही इंसान ऐसी चीज़ें पढ़े लिखे कि जिसमें खुदा का जिक्र ही ना हो। इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक है। और इसी तरह रूह के तकाजे पूरे किए बगैर कोई भी शख्स तरक्की नहीं कर सकता। असल में चूँकि आगे कुरान मजीद हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे। कहीं मैं कहूँगी कि तैयबात खाना इबादत है तो आप कहेंगे खाना भी इबादत, ये कहाँ से इबादत हो गया? क्योंकि कुरान का मौजू कौन है? इंसान। हम इंसान है इसका सब्जेक्ट, और इंसान जो है वो इन चार चीज़ों का मजमूआ है, और कुरान की जो तालीमात हैं वो इन चार चीज़ों के गिर्द घूमती हैं। सुम्मा अफ़ाउना, सुम्मा फिर, अफ़ाउना माफ़ कर दिया हमने, अनकुम तुमको, मिन से बादी बाद, बाद का ऑपोजिट क्या है? कबल। ज़ालिका इसके, लअल्लकुम, लअल्ला शायद के, ताके, कुम तुम, तश्कुरून तुम शुक्र अदा करो, ता शीन काफरा और वाउनून। शुक्र जो होता है ये दिल से भी होता है, जबान से भी होता है, और अमल से भी होता है। दिल से किसी नेमत का एतराफ करना, जबान से उसका जिक्र करना, और अमल से इतात करना, किसकी? मोहसिन की, जो हम पर एहसान करे। तो बुनियादी तौर पर शुक्र क्या है? किसी के एहसान और इनाम का तसव्वुर करना, उसका इजहार करना। दाबत शकूर कहते हैं उस जानवर को जो अपनी अच्छी सेहत के साथ अपने मालिक का क्या करे, जिक्र करे कि ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, कि मालिक उसकी खूब परवरिश कर रहा है। और शुक्र का ऑपोजिट क्या है? कुफ्र। और आम जबान में नाशुक्री और शिकायती रवैया। वाह, और इस जब, क्या माना इसका? उस गुरु, आते ही ना दी हमने, किसको? मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को। आते ही ना का माजी मुजारे क्या है? आता, युती, ईता, देना। मूसा पैगंबर है, अल किताब किताब, और यहाँ किताब से मुराद क्या है? तौरात। वल फरकाना और फुरकान, फुरकान का रूट है फा रा काफ, फर्क, अलग करना, अलहदा करना। पीछे पढ़ा फरकना, फुरकान इसम मुबालगा है, जैसे रहमान था

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
2: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: हमीदुद्दीन फराही साहब बड़ी प्यारी बात किया करते थे। उन्होंने जो दलाइल निज़ाम किताब लिखी अपनी, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। वैसे आप में से जो अरबी से कुछ आपका शगफ़ है, आपको लगाव है, तो उनकी किताबें अरबी में ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। उस इंसान को जो अरबी में महारत थी ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। उनका खुतबा है, अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास बलागत दी थी, अरबी ज़बान पर उनको अबूर था और इब्रानी पर भी उनको अबूर था असल में। तो मैं इसकी बात पहले मैं आपको बताता हूँ। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी कि जिस रब ने एक एक उंगली की एक एक हड्डी बड़े निज़ाम से बनाई, और तुम लोग कहते हो कि कुरान में निज़ाम नहीं है, उसने अपने खिलाफ, जिसने पूरी कायनात का एक निज़ाम बनाया और हर चीज़ मुरतब की, उसने अपने कलाम को मुरतब नहीं किया। पहले सफ़े पे दलाइल निज़ाम, यानी कुरान में जो नज़म है, जो उसका एक उसकी एक तरतीब है, उसके क्या दलाइल हैं, उसके पहले सफ़े पे उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा बाकी पढ़ने की, अब मैं पढ़ूँ क्या इसके बाद। तो उन्होंने जो अल्लाह ताला की हम की थी उस किताब में, बड़ी प्यारी हम थी। मुझे शायद थोड़ी सी याद है, मैं कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सानिउल खल्क़ी अला अहसनी क़वाम व अकमली निज़ाम। ऐसे अल्लाह की हम जिसने तमाम खल्क को बनाया बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम से और बहुत ही मुकम्मल कायम तरीके से, यानी एक एक जगह को सही तरीके से खड़ा करके। अलवादिउल अशियाई फ़ी अजदरी मकाम, जो हर चीज़ को अपने सबसे मुनासिब जगह पर हर चीज़ को डालता है, एक एक सेल को मुनासिब जगह, एक एक न्यूरॉन को मुनासिब जगह, एक एक इलेक्ट्रॉन को मुनासिब जगह, एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल को मुनासिब जगह, एक एक प्लैनेट को, एक एक गैलेक्सी को मुनासिब जगह पर डालता है, एक एक तिनके को, एक एक पत्ते को मुनासिब जगह पर डालता है। अलवादिउल अशियाई फ़ी अजदरी मकाम। फिर कहते हैं वस्सलातु वस्सलामु, जब आप सुनते हैं ना वस्सलातु वस्सलामु, किसका जिक्र आने वाला है? रसूल, तो आप सोचोगे कहेंगे वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ना, वस्सलातु वस्सलामु अलल मुअय्यद बिअबलगी कलाम। सलात और सलाम हो उस हस्ती पर जिसको अल्लाह ताला ने तायीद की अपने सबसे बलीग कलाम से। बिअबलगी कलाम व अरफ़की मसाम, और सबसे नरम पैगाम से, दिल को नरम करने वाले पैगाम से। फिर कहते हैं व अला अस्हाबिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम, और उनके अस्हाब पर और उनके आल पर जिनकी बड़ी इज्जत हो। कबद्रिन तजल्ला मिन बैनिल गमाम, जैसे एक चांद निकला हो बादलों में से। इला मदन लयाली वल अय्याम, जब तक दिन चलें और जब तक रात चलें। फिर कहते हैं वहादल किताब अफरदनाहु अला दलाइल निज़ाम, और ये किताब मैंने ख़ास मुख्तस की है कुरान के निज़ाम पर। पहले फ़लसफ़े में जो शायरी लिखी है ना कुरान, जो हमद की, उस हमद के अंदर ही सारी बात बयान कर दी। मेरा रब हर चीज़ अपनी जगह पर रखता है, और ये किताब मैंने शायद सोचा कि मैं लिख दूँ कि मेरे रब ने अपनी किताब में हर चीज़ अपनी जगह पर कैसे रखी, उस पर मैं ये किताब लूँ। क्या क्या बात करते हैं, वो भी सुभान अल्लाह। तो मैंने ये खुतबा याद किया, इनके दो तीन खुतबे मैंने, वो हमद हैं, तो मैं खुतबा जब अरबी में देता हूँ तो मैं उनका खुतबा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं जहाँ टेक्सास में मैं खुतबा देता हूँ, वहाँ अरब ज़्यादा है हमारे, तो मैंने खुतबा दिया। उनका एक और खुतबा है जो मैं आम आप लोग सुना, जो मेरे खुतबे सुनते हैं, मैं यूज़ करता हूँ उनका खुतबा। यू नो अल्हम्दुलिल्लाह खालिकुल वुजूद मिन अलअदम व जाइलुन नूर मिन अज़्ज़लम, उनका खुतबा है। मैं इस्तेमाल किया तो एक इराकी साहब मेरे पास आए, والله يا شيخ من اين جئت بهذه الخطبه كانت رائعه جدا جدا, يعني بڑا عظیم خطبہ تھا, یہ کس کا خطبہ تھا؟ لا منك, آپ کا تو نہیں تھا. میں نے کہا نہ مني, لا لا, قطع السعودي مصري من كان سعودي تھے, مثل قال قلت میں نے ان سے کہا ہندی ہندی كان ہندی لا ابدا لا قلت نعم كان ہندی. हमारा एक हमारे हमारी हिस्ट्री में हमारे उलमा के जो कारनामे हैं ना, वो हम भूल गए हैं। इस खित्ते के उलमा, इस खित्ते में जो काम हुआ है ना, वो अंदाज़ा नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। मैं गया था वहाँ पर, मुझे रोना आ गया था, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गया था कुछ साल पहले, अभी कुछ महीने में था पहले, वहाँ पर उनकी फैकल्टी से मेरी बात हो रही थी, कुरान स्टडीज़ पर। लेकिन उससे कुछ साल पहले मुझे एक बड़ा दिलचस्प नौजवान मिला, वहाँ पर सूडान से आया हुआ था, वहाँ PhD कर रहा था कुरान पे, मलेशिया में गोमबाक में। मैंने कहा किस चीज़ पे PhD कर रहा हूँ? कहता हमीदुद्दीन फराइज साहब पे PhD कर रहा हूँ। उनकी 45 किताबें ढूंढ ढूंढ के, जो अरबी में लिखी, जो कुछ उर्दू में लिखा, एक दो फारसी में भी लिखी, एक दो इंग्लिश में भी उन्होंने आर्टिकल लिखे, वो सारे कहीं ना कहीं से जमा करके उनमें पूरी PhD पे काम कर रहा था। और ये एक तो मुझे खुशी भी हुई और उदासी भी हुई कि यार मलेशिया में जाके एक सूडानी लड़का, जो हमारी हेरिटेज है, हमारे उलमा की हेरिटेज है, उसको वो उस पर वहाँ पर वो काम हो रहा है, क्या हमारी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा खैर, यहाँ पर जिन्नात के और इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में मैं एक बात बता दूँ। मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, कुरान में जो सूरतें हैं ना, उनका एक नस्क है। नस्क अरबी में कहते हैं पिरोने को भी, उसका भी एक लफ्ज़ है। जैसे आप जो स्वेटर बनाती है ना दादियाँ और नानियाँ, उसको भी नस्क कहा जाता है अरबी में। तो जो नस्क है ना आयात का तनासुक, उसके हिसाब से जब इस आयत को पढ़ें कि जिन से और इंस से कहा जा रहा है कि निकल जाओ आसमानों की तरफ। अब हुआ क्या कि 60s में मून लैंडिंग हुई, आपको पता होगा, जब मून लैंडिंग हुई तो हमारे यहाँ एक ईमान का फितना बढ़ गया। ओए अल्लाह ताला ने तो किया सी, नहीं जा सकते, ये कैसे पहुंच गए? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन तनफुदू बिन अख्तार समावाती वल अर्द फनफुदू। उसके पहला बुनियादी जवाब पहले आप समझ लें, पहला बुनियादी जवाब, और वो ये है कि सूरतुर रहमान की जिस आयत से ये बात ली जा रही है, वहां बात हो रही है क़ियामत के शुरू होने की। क़ियामत शुरू हो गई है। अब क़ियामत शुरू हुई है तो अल्लाह ताला कहते हैं सनफ़रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, क्योंकि इंसानियत समझती थी खुदा ने कायनात बनाई है, इतने बड़े बड़े अजराम बनाए हैं, इतने बड़े बड़े काम करता है, उसको मेरी थोड़ी सी रिश्वत से क्या मतलब यार, मैं इधर थोड़ा बहुत झूठ बोल लूँ, ये मैंने कुछ देख लिया, ये कुछ कर लिया, इससे उसको उसको बड़े काम है करने को। उसको कोई ब्लैक होल देखना होगा कहीं पे, उसको कोई वॉल्केनोज देखने होंगे, कोई स्टार गैलेक्सीज होंगी, कोई कितने बड़े बड़े उसको काम करने, मेरे काम में क्यों पड़ेगा, उसको और कोई काम नहीं है करने को। तो इंसान क्या समझता है कि अल्लाह ताला बड़े कामों में मसरूफ है। उसकी मैं ज़हनियत की मिसाल देता हूँ आपको। टीचर जब ना कभी कभी डेस्क पे बैठा ऐसे होमवर्क चेक कर रहा होता है, उसको जो जो भी है आसमान और ज़मीन में वो उसी से, उसी का तलबगार है, उसी से कोई ना कोई मुतालबा कर रहा है उसको, यानी एक लातादाद हद के लातादाद मुतालबे उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो हर वक्त हर आन किसी ना किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जो सिर्फ वही कर सकता है। उसको शान कहते हैं, शान कहते हैं ऐसा काम जो कोई और ना कर सके। तो यानी इस आयत से शायद किसी को गलत फहमी हो कि वो बहुत ही मसरूफ़ है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। उसका जवाब आते अल्लाह ने खुद ही कह दिया, अच्छा तुम समझते हो मैं मसरूफ हूँ, सनफ़रुहु लकुम अय्युहा थक़लान, हम अपने आप को तुम सबके लिए फारिग करते हैं। अब तुम समझते हो मसरूफ़ हैं हम, चलो फारिग किया हमने अपने आप को तुम दोनों के लिए। तुम दोनों क्या, थक़लान, थकील किस चीज़ को कहते हैं उर्दू में, थकील भारी चीज़ को, थक़लान तुम बड़ी भारी तादाद इंसानों की, और तुम्हारी इतनी भारी तादाद जिन्नात की, तुम समझते हो इतने सारे हो, एक दो तो बीच में से फिसल के लॉ से निकल जाएंगे ना, कोई ना कोई तो खिसक के घुस जाएगा स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना, जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ चोरी का इम्कान ज़्यादा होता है, बचने का इम्कान ज़्यादा होता है, पुलिस किसी के पीछे जा रही है बड़ा क्राउड है तो वो क्राउड में घुस के निकल जाएगा। अस्तकलान कहते हैं बहुत बड़ी तादाद हो तुम, चलो हम फारिग करते हैं अपने आप को, तंजिया कलाम है कुरान में। फिर कहा अच्छा अब जब फारिग कर लिया तो इंसान को पता है पकड़ आने वाली है, जिनको भी पता है कि अब क्या होने वाला है, पकड़ आने वाली है। अब इंसान जब भाग के कहीं छुपने की कोशिश करेगा तो कहाँ जाएगा, जमीन में कहीं घुसेगा, कोई गार ढूंढेगा, कोई बेसमेंट ढूंढेगा, कहीं ढूंढेगा, कहीं मैं घुस जाऊं, कहीं बच जाऊं। जिन जो है वो कहेगा तुम लोग क्या घूमो छुपोगे, मैं कहाँ निकल रहा हूं आसमान में। अब सुनना इस आयत को दोबारा, या माशर अल जिन्नी वल इंसी, दो ग्रो जिन और इंस, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाती वल अर्दी, तुमने आसमान में कहीं निकल के घुसना है, किससे कहा जा रहा है, जिन से, तुमने जमीन में जाके कहीं घुसना है, किससे कहा जा रहा है? इंसान से। चलो जाओ, कसर निकाल लो, भागना है भागो, देखते हैं कितनी दूर जाते हो। ला तन्फुदूना इल्ला बिसुल्तान। फिर अच्छा, इंसान भाग के जा रहा है, कहीं दूर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगली आयत में कह दिया युरसलु अलैकुम शुआज़ुम मिन नार, ऊपर से हवाई फायरिंग हो रही है, मीटर बम गिराए जा रहे हैं। इधर भाग रहा है इंसान, इधर बम गिरा, उधर गिरा, उधर बम गिरा, इधर गिरा, इधर आया, उधर बम। जहां गिरता है, जहां धमाका होता है, उसकी तरफ इंसान भागता है, उससे दूसरी तरफ भागता है, उसे दूसरी, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उसकी उसके भागने को रीडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो जिन्नात का, ये इंसान का मसला हुआ, और जिन्नात भी बेचारे अब ऊपर जाएंगे, फायरिंग कहाँ से आ रही है? आसमान से आ रही है। लेकिन वो भी अभी तो इशारा हुआ कि ज़मीन पर फायरिंग हो रही है, अगर कहीं फायरिंग से बच के इंसान जिन जो है ऊपर निकलने की कोशिश भी करे, तो कह दिया फ़ैदन शक्कत इस समा, आसमान सारा फाड़ दिया मैंने, जब सारा इंसान फट के खुल जाए, वो उसकी सारी एस्केप का, उसके बचने का सारा इम्कान क्या था जिनका, आसमान आसमान ही फाड़ दिया मेरे रब ने। फ़कानत वर्दतन कद्दीहान। तो ये एक ख़ास तस्वीर खींची जा रही है, इसका मून लैंडिंग से ताल्लुक नहीं है, इसका क़यामत के दिन से ताल्लुक है। इसको सही सियाक में समझने की ज़रूरत है, जो बात कही जा रही होती है अगर आप आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट से निकालोगे ना, तो फिर ठीक है उसमें दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में किसी बात की तरफ इशारा हो तो हो, लेकिन पहला हक बनता है कि जो बात कही जा रही है किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है उसको कैसे समझा जाए पहले। ठीक, अभी की आखिरी मिसाल और सबसे खूबसूरत मिसाल मैंने नज़दीक, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم। عام طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخر میں, آیات کے آخر کو تفسیری زبان میں فواصل کہا جاتا ہے, فواصل اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواصل, تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواصل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواصل الآیات۔ اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس کے لیے, وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے, فاصلہ عربی میں الگ ہے, فصل آخر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں, تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواصل, فواصل قرآنیہ۔ اچھا خیر, تو آیات کے فواصل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا السمیع العلیم الغفور الرحیم عزیز الحکیم, آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ چار, الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات کی الملک, جو فاتحہ ابھی ہم پڑھ چکے, بادشاہ, جو بادشاہ ہے, ٹھیک ہے۔ القدوس, جو پاک ترین ہے, جو پاک ترین ہے, جس سے پاکیزگی, ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے, ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی, وہ ہے القدس۔ اسی لیے کہا روح القدس, جو اس کی طرف نصب کی گئی ہے, یعنی پاکیزگی والی روح, اور وہ بھی القدس سے روح القدس, جبریل علیہ السلام کا نام۔ اچھا, پھر ہے العزیز۔ العزیز کہتے ہیں اتھارٹی کو۔ العزیز میں دو, عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے, عزت کا عربی میں اس کے دو معنی ہیں, یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ عزہ, اس کا پہلا معنی ہے اقتدار, اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن عزہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لیے, اسی لیے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا نا, امراۃ العزیز, عزت دار نہیں ہے وہ, اتھارٹی والا ہے, اس لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے, تو یہ ہے العزیز۔ اور پھر آخر میں ہے, اور ایک اور بات, عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والے کے لیے بھی عربی میں بہت استعمال ہوا ہے, جیسے سورت یوسف میں بھی ہے, ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو, تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لا ایشو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے, حکمت والا۔ ٹھیک ہے, تو چار نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی, اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ جن لوگوں کا پڑھنے کا, کتابیں لکھنے کا, اس کا ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی, امی ام سے نکلا ہے, ام کسے کہتے ہیں عربی میں, ماں کو, جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا, یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا, پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا, بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں پڑھا سکیں. ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے, جو پھر کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے. اپنی آیات, آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں, آیات کہتے ہیں نشانی کو, آیات ہے نشانی, تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے. وہ یزکیہم, اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت کے بارے میں, اصل میں آیت کے بہت سارے معنی ہیں, وہ لمبا لیکچر ہو جائے گا, لیکن ایک دو چیزیں سمجھ لیں آیت کے بارے میں. آیت کے مفہوم میں ہے نشانی, آیت کے مفہوم میں بھی ہے یہ ای یا ای سے نکلا ہے جس میں تعجب ہے, یعنی تعجب دینے والی نشانی, جس چیز سے تعجب آئے نا انسان کو وہ ای کہتے ہیں, لائک ای رجل, عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کیا عظیم آدمی, ای رجل, ای کتاب, کیا عظیم کتاب. تو ای کا لفظ اصل میں تعجب بھی اس کے اندر شامل ہے. تو تعجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے. وہ یزکیہم, اور وہ ان کو کیا کرتا ہے, پاک کرتا ہے, وہ انہیں پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب, اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے. کتاب, ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں, لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید. کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لیے, قانون کے لیے, جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, کتاب کر دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے, تم پر روزے کے قانون عائد کر دیا گیا. اسی طرح کہا جو وراثت کے احکام ہیں اس میں کہا کتاب اللہ علیکم, اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے, اس کا مطلب کیا, اللہ کا قانون, قانون. سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو قانون سکھاتا ہے, اور پھر ساتھ ہی ول حکمہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے, لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون, کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہے. ایک دو باتیں ابھی کے لیے کافی ہوں گی. قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے, اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں, قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے. قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کرو گے تو حرام ہے, یہ کرو گے تو حلال ہے, ٹھیک ہے. تو قانون ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ, بہت سیدھی سیدھی لائن ہوتی ہے, اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو, اس طرف کراس کرو گے تو حرام کے دائرے میں آ جاؤ گے, جرم کیا ہے, ٹھیک ہے. حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے, اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو, یہ حکمت ہے قرآن کی, زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو, یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے, اس کی پینلٹی ہونی چاہیے. لیکن کسی کی واک میں کوئی ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا لیکن اندر اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے, ممکن ہے کہ نہیں. قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو, اس کا جائزہ لے سکتے ہو قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے. تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دی ہے, اور دونوں کی اہمیت, دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی, یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو. جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے, کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ہر ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے, ٹیکس پے کرتا ہے, چیٹنگ نہیں کرتا, کرائم نہیں کرتا, مرڈر نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, कानून का पाबंद है इसका मतलब अच्छा इंसान है ना, इसका मतलब है कानून का पाबंद है। आवाज़ ऊंची करता है, लोगों से बदतमीजी से बात करता है, अकड़ के चलता है, बच्चों से नरमी नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, ये सारी हरकतें हिकमत के ख़िलाफ़ हैं लेकिन कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। इंसान का डिसेंट होना, अच्छा होना, ना से उसका पहला कदम कम अज़ कम कानून का लिहाज, और उसके बाद एक मजीद मरहला क्या है कि उसमें हिकमत भी होनी चाहिए, फिर जाके वो एक अच्छा इंसान बनता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ कानून नहीं सिखाया, कानून भी सिखाया और हिकमत भी सिखाई। हमें क्या नई बीमारी आई इस कौम को, इस उम्मत को? हम कहते हैं हराम तो नहीं है ना, हराम तो नहीं है ना, गैर कानूनी तो नहीं है ना, तो करने दो। यानी अब हमें सारा का सारा, हमारा सारा फोकस किस पर है? कानून पर। फतवा दे दीजिए, फतवा दे दीजिए कि कानूनी है या गैर कानूनी है, हिकमत के मुखालिफ हो, इंसानियत के तकाजों के मुखालिफ हो, अखलाक के मुखालिफ हो, उससे मुझे क्या, उसमें जितनी भी बेदर्दी हो, गैर कानूनी तो नहीं है ना, हराम तो नहीं है ना। तो हर एक के जमान में बस ये बता दें, ये हलाल है कि ये हराम है, ये हलाल है कि ये हराम, हलाल हराम हलाल, वो सारा किताब का मामला है। और उसमें से आपने किस चीज़ को अलग कर दिया है? हिकमत को। अल्लाह ने ऐसा रसूल भेजा जो अपनी आयात आकर सुनाए, उन्हें पाक करे, उनको कानून सिखाए और साथ ही हिकमत सिखाए। चार चीज़ें कही जा रही हैं, चार चीज़ें। पहली आयत में कितने नाम थे अल्लाह ताला के? चार नाम थे। पहला नाम क्या था? बादशाह। बादशाह को पहचाना जाता है बादशाह की जो है अजीब और बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में डालने वाली निशानियों से। किसी बादशाहत में दाखिल होगे तो उसके बड़े बड़े महल को देखोगे, उसके फौजियों के यूनिफॉर्म को देखोगे, उसके झंडों को देखोगे, उसकी बनाई हुई सड़कों को देखोगे, और ये उसकी बादशाहत की क्या हैं? निशानियां हैं। मिस्री जो हैं उनको डर था कि और कौमें आकर उन पर हमला करेंगी, जो कदीम मिस्री हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े अहराम और जो बड़े बड़े उनके स्टैचू वगैरह थे, जो बुत उन्होंने बनाए थे और सुतून बनाए थे, वो सिर्फ पानी के किनारे बनाते थे वो ज़्यादातर। क्यों? ताकि और कौमें वहाँ से गुजरें तो उनको इस कौम की बादशाहत की अलामत नज़र आए और कहें इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे नहीं, ये देखो ये क्या क्या बनाते हैं ये लोग। तो असल में बादशाहत पहचानी जाती है निशानियों से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला अमल क्या था, क्या सुनाते हैं? अल्लाह ताला की निशानियाँ। दूसरा नाम क्या है अल्लाह ताला का? अल-कुद्दूस। क्या मायने थे अल-कुद्दूस के? पाक, पाक। और दूसरा अमल क्या है मेरे नबी का अलैहिस्सलाम? वो यज़की है, वो पाक करते हैं। तीसरा नाम क्या है अल्लाह ताला का यहाँ पर? अल-अज़ीज़। अल-अज़ीज़ मैंने कहा था जिसके पास इक्तदार हो, जिसके पास हुकूमत हो, उसको अल-अज़ीज़ कहते हैं, इज़्ज़त हो और हुकूमत हो। और तीसरी चीज़ क्या सिखाते हैं मेरे नबी? वयुअल्लिमुहुम अल-किताब। किताब का मैंने क्या मैंने बताया था, कानून कहाँ से आता है? जिसके पास इक्तदार हो वहाँ से कानून आता है। अल-अज़ीज़। आखिरी नाम क्या है अल्लाह ताला का इस सीक्वेंस में? अल-हकीम, अल-हकीम। और रसूल क्या सिखा रहे हैं आखिर में? अल-हिकमा। सुभानअल्लाह। अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अल-अज़ीज़, अल-हकीम। यतलु अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिकमा इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Meri umeed ye hai ki aapko kam se kam Arabic grammar mein thodi dilchaspi kara do ki ye zabar zair ka chakkar hai kya, ye hota kyun hai, isse fayda kya hai? Aap jab zabardasti aapke parents aapko qari sahab ke paas leke jate the, un an in bun ban bin तुन तन दिन जुन जन जिन चढ़ गया, फिर बू बाबी तू ताती, उस वक्त क्या क्या फायदा है इसका? लेकिन हर उ और हर आ और हर ई और हर उन और हर एन और हर इन का एक मकसद है, और अल्लाह उनमें से हर एक मकसद में से अपने जवाहर, अपनी हिकमत के जवाहर उसमें डालता है। तो अगर ये चीजें थोड़ी सी समझ में आती, ठीक है अरबी सीखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बाद में बड़ा मजा आता है। उसकी मिसाल देता हूं अरबी सीखने की, डेंटिस्ट के पास जाना।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. That the best of you are those who learn the Quran and teach it.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds. And Allah has power over all things."
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Tisra naam kya hai Allah Taala ka yahan par? Al-Aziz. Al-Aziz maine kaha tha jiske paas iktidar ho, jiske paas hukumat ho, usko Al-Aziz kehte hain. Izzat ho aur hukumat ho. Aur teesri cheez kya sikhate hain mere nabi? Wa yu'allimuhum al-kitab. Kitab ka maine kya maana bataya tha? Qanoon kahan se aata hai? Jiske paas iktidar ho wahan se qanoon aata hai. Al-Aziz, آخری نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سیکوینس میں؟ الحکیم. الحکیم اور رسول کیا سکھا رہے ہیں آخر میں؟ الحکمہ. سبحان اللہ. الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.

0: ये कहने का मकसद ये होता है कि अगर सब्र की कोई मूर्ति होती तो ये होती,
1: अगर इल्म किसी में मुजस्सम होता तो ये होता,
0: अगर जिसी तरह अगर दौलत सारी किसी एक इंसान में समोती गई होती तो वो ये इंसान होता। इसे कहते हैं मुबालगा। मुबालगे में क्या होता है, इंसान बढ़ा चढ़ा के बात करता है,
1: तो मुबालगे में हमेशा आम तौर पर झूठ होता है, मुबालगे में झूठ होता है। जैसे मैं कहूँ ना ये शेर है, शेर शेर तो नहीं है वो, तो उसमें मुबालगे में ज़रा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, ठीक है। लेकिन कुरान ने जब मुबालगा इस्तेमाल किया तो वो तो अल्हक्कुल यकीन, अल्लाह ताला ने तो हक नाजिल किया है,
0: तो अल्लाह ताला ने अपने मेयार से बताया कि मेरे अपनी तरफ से अपने नुक्ता नज़र से बता रहे हैं कि मेरे नज़दीक अच्छाई का मुजस्मा वो इंसान है जो अल्लाह पर ईमान ले आए, उसके रसूलों पर ईमान ले, फरिश्तों पर ईमान ले आए और किताब पर ईमान ले आए। किताबों का जिक्र नहीं किया, एक किताब का जिक्र किया। क्यों? अगर किताबों की बात की होती तो किन किताबों की तरफ इशारा होता?
1: तौरात, इंजील, सुहफ़ इब्राहिम।
0: अगर किताब की बात की है तो किस किताब की तरफ इशारा है? कुरान की तरफ इशारा है। पूरा ये दूसरा हिस्सा है बकरा का, पहले हिस्से में तो एक ही बात कही जा रही है, अब तौरात की जिद छोड़ दो, कुरान आ गया है, कुरान आ चुका है। आमिनु बिमा अनजलत मुसद्दिकन लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही। अब पिछली किताबों को पकड़ कर इस किताब का इनकार करना अब जायज नहीं रहा, अब इस किताब पर ईमान लाना पड़ेगा अगर अच्छा होना है तो, अब इस किताब का हक बनता है, अब आ चुकी है किताब। तो यहां पर एक किताब को मुख्तस किया गया है, कुरान को। वल किताब वन नबीयीन,
1: अच्छा
0: फिर आके और अच्छाइयों के बारे में बात की जा रही है कि ये जो इंसान है जो अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम अच्छाइयों को अपने अंदर समोए हुए है, वो अच्छाई अच्छाई बन के वो गुजर रहा है, वो जहां जा रहा है वो अच्छाई गुजर रही है, वो कौन सा इंसान है? वह आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा, वो अपना माल देता है अपने माल के मोहब्बत के बावजूद या अल्लाह की मोहब्बत में आकर, इसके कुछ मुख्तलिफ मफाहिम हैं, करीब रिश्तेदारों को देता है, वलमसाकिन वबन सबील वसाइलिन, पूछने वालों को, साइल पूछने वाले को भी कहते हैं, ज़रूरतमंद को भी कहते हैं, ज़रूरतमंदों को, वह फिर रिकाब, और जो फंसे हुए हैं, जो गर्दन जिनकी गर्दन फंसी हुई है, यानी जो जंजीरों में हैं, जो ग़ुलामी में हैं, जो कर्जे में हैं, जो जेल में हैं, वो फिर रिकाब हुए, वह अकाम अस्सलाता, और उसने उसके बाद नमाज कायम की, वह आतज ज़कता, और उसने ज़कात दी, वलमूफूना वलमूफूना। अब पिछली सारी बातें फेल थी, आमना ईमान लाया, आता उसने दिया, उसने दिया, फिर अकामा उसने कायम की, फिर आतज ज़कता उसने ज़कात दी, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा वह अवफा, उसने वफा की, अहद के साथ वफा की, उसने अहद को पूरा किया। यहाँ फेल का इस्तेमाल नहीं है, इसम का इस्तेमाल है। फेल और इसम का फ़र्क याद है, इसम में क्या होता है और फेल और इसम के मुकाबले में कवी ज़्यादा कौन सा है? इसम। यानी वो सारी बात तो है, लेकिन इस सारी बात का खुलासा पता है कब पता चलेगा कि कौन वाकई अच्छा है, जो वादे के मामले में बात पूरी करता है हमेशा। असल चीज़ की तरफ आप आए हैं, अफ़ाल से बिल्डअप करके असल मामला, असल ईमान का, अच्छाई का इम्तिहान यहाँ है, उसका यानी नमाजों का, देने का, वो सब का खुलासा क्या निकला? वादा पूरा करता है पक्का, हमेशा हमेशा। वलमूफूना बिअहदिहिम, अब मूफूना में ये ऊना है, देख रहे हैं आप, ऊना आपने कभी सुना होगा, कभी ऊना होता है कभी ईना होता है। हुदल लिलमुत्तकीना कुल या अय्युहल काफिरूना, कभी ऊना होता है कभी ईना होता है, इसका ग्रामर से ताल्लुक होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी याद रखना, अगर ऊना है और फिर वा और, तो बाकी भी ऊना ही होंगे। अलकाफिरूना वलमुनाफिकूना वलमुस्लिमूना वलआबिद, ऊना ऊना ऊना, अगर ईना है तो सारे ईना ही चलते आएंगे। अलमातूफ़ अनिल मरफू मरफू, अलमातूफ़ अनिल मनसूब मनसूब, अलमातूफ़ अनिल मजरूर मजरूर। उसका मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, बस आपको शर्मिंदा करने के लिए मैंने अरबी का हवाला दिया था ताकि आप अरबी सीखें थोड़ी सी। यहाँ पर है वलमूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदु, यानी ऊना सुनाई में सुनाई दिया ना, तो इसका मतलब है आगे क्या होना चाहिए, एक और ऊना। والصابرون في البأساء والضراء وحين الب... یہاں کیا ہوا؟ والصابرین. اورینٹلسٹ کہتا ہے آہ گرامر مسٹیک، اونا ہونا چاہیے تھا، دیکھا اینا ہے قرآن میں، غلطی، کیونکہ اس نے تیسری جماعت تک پڑھا ہوا ہے مسکین نے، تو اس کو غلطی نظر آ گئی، وہ تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا دروازہ نہیں کھولا، کیا کر سکتے ہیں بیچارے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں گروسریز کرانے کے لیے، بیبی گھر پہ ہے، انڈے لانے ہیں، دودھ لانا ہے، بریڈ لانا ہے، ٹماٹر لانے ہیں، پیاز لانے ہیں اور ڈائپر لانے ہیں، بہت ساری چیزیں لانی ہیں، لیکن ایک ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی، پیمپر نہیں بھولنے. تو ہوگا دودھ ہونا، بریڈ ہونا، انڈے ہونا، پیاز ہونا، ٹماٹر ہونا، ڈائپر ہینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایک لسٹ ہوتی ہے اس میں سارے اونا ہوتے ہیں اور پھر ایک آئٹم لسٹ میں آتی ہے جو باقی ساری آئٹمس پر بھاری ہے، تو اس کو غیر معمولی طور پر اونا سے کہاں لے آتے ہیں؟ اینا. تو والصابرین میں اب کہا ان سب سے اوپر اور اعلیٰ مقام، ان سب کا کلائمیکس یہ مت بھولنا، والصابرین بالبأساء والضراء وحین البأس. اگر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا پرنٹڈ کتاب میں تو میں صابرین کو اردو ترجمے میں اس کو بڑا لکھ دیتا میں، اور صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس. کیوں اتنا اہتمام صبر کے اوپر کیوں؟ اس اسلوب کی اور لیکن الراسخون فی العلم والمقیمین الصلاۃ ہیں مصالیب. اسی طرح ہے وامرأته حمالۃ الحطب، عجیب نصب، زبر. تو اس کے کچھ 16 مختلف فوائد ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جہاں یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا، النصب علی الاہتمام، نصب کیا جائے اہتمام کے لیے یا خاص تفخیم کے لیے، یعنی اس کو بھاری کرنے کے لیے. تو یہ لسٹ میں ہوتا ہے اور اس پہ پھر ایک دم سے نصب آ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا والصابرین. اب صبر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ صبر کہتے کس چیز کو ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو، ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو، جو میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستانی صبر ہے. قرآنی صبر اور چیز ہے، پاکستانی صبر اور چیز ہے. قرآن والا صبر کیا ہے؟ کہ جو آپ صحیح کام کر رہے ہو وہ آسان ہو، مشکل ہو، کوئی سپورٹ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی اکیلا ہو، کوئی سب کے ساتھ ہو، کوئی کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے، کوئی طاقتور محسوس کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، میں نے ہٹنا نہیں ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے پیچھے قدم، میں نے آہستہ قدم لینا ہے لیکن قدم میں نے ضرور لینا ہے، میں نے بڑھتے چلے جانا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. صبر کی اگر تصویر اپنے ذہن میں ایک کھینچنی ہے نا کہ آندھی چل رہی ہے، ریت آپ کی طرف منہ میں آ رہی ہے اور آپ قدم چلتے چلے جا رہے ہو، چلتے، یہ صابر ہے. صابر ہے جو بڑھتا چلا جائے، بڑھتا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے صبر کرنے والا. اس کے اندر ایک ٹفنس ہے، اس کے اندر ایک اس کے اندر قوت ارادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. اس لیے صبر اور استقامت کے لفظ دونوں ہم اکٹھے استعمال کرتے ہیں، صبر و استقامت. کیوں؟ کیونکہ اس میں اردو کے اعتبار سے اصل میں اس میں استقامت ہے، اصل میں استقامت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرض کریں کوئی اچھا تھا، اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، خیرات کی، لوگوں کا خیال کیا، وعدے پورے کیے، لیکن پھر ڈھیلا پڑ گیا. کس چیز کی کمی تھی؟ صبر کی کمی تھی. صبر کی کمی ہوئی تو وہ سارے جو اچھے کام کیے تھے، پازیٹو میں جا رہے تھے، وہ پھر بیکار ہونے شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جا کے میں نے بہت اچھے کام کیے تھے لیکن اب مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صبر کی کمی. میں مردوں اور عورتوں میں صبر کی کمی مختلف طریقوں سے آتی ہے. میں آپ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے بہت دفعہ سنی ہے. مجھے کہتا ہے میں بہت نماز وغیرہ، میں نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کروں، مجھے خیال ہوا کہ میں جاؤں اور میں اٹینڈ کروں اور میں کچھ سیکھوں، تو میں وہاں پہ گئی، پہلی دفعہ میں نے پردہ کیا اور میں نے نماز پڑھی، اور پیچھے سے کسی نے مجھے کہا آپ نے نماز غلط طریقے سے پڑھی ہے. پھر میں نے کہا بس میں یہاں واپس نہیں آ سکتی،
1: इतने जजमेंटल लोग होते हैं ये, इतना मुझे जज किया इन लोगों ने, मैं अब नहीं आ सकती यहां पे, क्योंकि इस इतना बड़ा फित मुझे कैसे कह दिया इन्होंने, ये कितने कितनी बेतरती से उसने मुझे कमेंट मारा। अब कंपेयर करते हैं, ये बंदा नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, किसी ने कहा तेरे पंचे उससे नीचे हैं, टहने से नीचे, तेरी नमाज नहीं होगी, वो ऐसे तेरी नमाज कबूल नहीं हुई, कहते हैं ठीक है। उसको टू डिफरेंट रिएक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? बिकॉज सब इनका सबर का इम्तिहान और तरह से होता है, आपके सबर का इम्तिहान और तरह से होता है। आपको कोई कोई को बात कहते तो वो बात खंजर की तरह एक दफा नहीं लगती, वो निकाल के आप फिर दोबारा लगाते हो, फिर निकाल के फिर दोबारा लगाते हो, फिर निकाल के फिर दोबारा लगाते हो। ओह माय गॉड, कितनी दफा कहा था? एक दफा रिपीट पे लगाए, इसको हजार दफा कह दो उसको एक दफा का याद नहीं रहता। ये भी कहा था तुमने? हाँ। हमारे सबर का इम्तिहान और उनके सबर का इम्तिहान और, अल्लाह की मखलूक है। इन सयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। गलत जी जी, हुक्म तो एक ही है लेकिन उसका इम्तिहान मुख्तलिफ है ना। हुक्म तो एक ही है, नमाज का भी हुक्म एक ही है, ज़कात का भी हुक्म है, सफ़र का भी हुक्म है, अकाम तो एक ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा ना रात दिन मुख्तलिफ बनाए, उसी के साथ कह दिया कि मर्द और औरत को मुख्तलिफ बनाया। वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्था, जहाँ रात और दिन के इख्तिलाफ़ की बात की वहाँ मर्द और औरत के इख्तिलाफ़ की बात की। हमारी साइकोलॉजी अलग है, हमारी थॉट प्रोसेस अलग हैं, हमारी वीकनेसेस अलग हैं, किसी चीज़ में इनको इतना स्ट्रांग बनाया हमें बहुत कमज़ोर बनाया, किसी चीज़ में इन्हें बहुत कमज़ोर बनाया हमें बहुत स्ट्रांग बनाया। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने ये बनाया। लेकिन असल चीज़ ये है कि इंसान जितना भी अच्छा कर ले अगर सब्र नहीं है ना तो सारी अच्छाई पे वो खुद ही पानी फेर देगा। और फिर सब्र का इम्तहान आराम आसान सिचुएशन में नहीं होता, असल में सब्र का नाम ही ये है कि मुश्किल में इंसान थामे रखे। इसीलिए कहा है वह साबिरीन फिल बसा व बर्रा व हीन बस उलाई कल्लदीन सदक। तो फिर यहाँ पर ना वह उलाई कहूँ मुतक, उन्होंने वाकई सच का हक अदा किया है और वही हैं तकवे वाले। अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
1: हम जो है ना, हम उम्मत, हम एक जिस्म की तरह है, इसकी एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारे हिस्से को तकलीफ होती है। तो जब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है तो कुरान ने क्या ताबीर इस्तेमाल की है? हम अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं। आप किसी मुसलमान की बेइज्जती करते हैं, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बेइज्जती कर रहे हो। आप किसी को शर्मिंदा कर रहे हो, किसी मुसलमान को? आप किसे शर्मिंदा कर रहे हो? आप खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। आप किसी के नाम की धज्जियां उड़ा रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी से मुसलमान से ज्यादती कर रहे हो, आप अपने आप से कर रहे हो। बड़ी हिकमत है कुरान की, कुरान ने बार बार ये बात समझाई है।
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.